0: Celebrating 36 years of excellence.
1: 24 hours a day. Sunrise Radio.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: Sunrise Radio. अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
2: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
2: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
2: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सड़ा सोना
3: वसीम ज्वेलर्स।
4: रॉन्ग टूल फॉर द जॉब? डोंट मेक दैट मिस्टेक विद योर वैन। Save thousands on selected new Toyota vans with a warranty up to 10 years or 100,000 miles with every qualifying routine service. Visit your nearest Toyota center or visit toyota.co.uk/vansavings for more details. Savings on selected vans ordered by the 30th of September 2026. UK residents, see toyota.co.uk for full details. T's and C's apply while stocks last.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: Get ready for quality foods. Diwali Dhamaka 2026. Amazing offers, exciting competitions and some incredible prizes to be won. Keep listening to Sunrise Radio as we reveal more. And visit Quality Foods Hayes, Southall, Hounslow and Ilford.
7: With LV, I can get my car insurance from just £299. Just the price I'm after right now. And if I'm hit by an uninsured driver, I won't lose my no-claim discount. Because insurance is simple when it's me and LV.
8: No wonder we're rated excellent on Trustpilot. Get your quote today at lv.com. 10% of new customers pay £299 or less, November 2025 to April 2026. Uninsured driver promise is non-fault accident only. Other vehicle and driver details required.
0: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777. This is Sunrise, the UK's biggest.

0: जाने मन। बेहद खूबसूरत ये गाना टेकन फ्रॉम तीसरी मंजिल, रफी साहब की आवाज में। तुमने मुझे देखा, अ फैंटास्टिक चिलिंग मर्डर मिस्ट्री अंटिल यू रियलाइज राइट एट द एंड दैट द किलर यू हैव हार्डली सीन हिम इन द स्टोरी, यू हैव हार्डली सीन हिम इन द फिल्म। हाउ आर यू मेंट टू गेस दैट दिस पर्सन माइट बी द किलर अंटिल ऑफ कोर्स राइट एट द एंड शम्मी कपूर क्राउचिंग इन अ वार्डरोब, a velvet jacket brushing on his shoulder, and he suddenly realizes that one jewel encrusted button on that velvet jacket is missing. That was the button the victim was clutching in her hand when she was pushed from the teesri manzil, third floor.
1: Aur kuch puchna chahte hain aap to wo bhi puch lijiye. Itni baar humne is film ko dekha hai, ye jante hue ki killer kaun hai.
0: That's the fun, in my opinion.
2: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
3: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम।
0: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Watch Bareilly Ki Bachchan, Monday to Friday at 8 p.m. on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. I'd like to think my Hindi is good, but this is where I begin to show my Bengali roots. Is it film ko dekha hai ya film dekhi hai? Both sound correct to me, really, depending on context. Nonetheless, forgive me. Musafir Cafe, Rozana, jahan bhi aap sun rahe, good morning. Yeah.

0: एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल मुकद्दर का सिकंदर,
1: तेरे बिना भी क्या जीना,
0: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज फ्राइडे द 4th ऑफ सितंबर की सुबह शबनम साही के साथ, जहां भी आप सुन रहे हैं, होप यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल फ्राइडे।
2: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
3: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं। आपको फिक्र करने की

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: अगर आप उसे लड़खड़ाने भी नहीं देंगे तो वो अपने आप को संभालना कैसे सीखेगी?
2: वो बाहर की नुकीली दुनिया के लिए नहीं तैयार है.
3: शायद समझ नहीं आएगी पर याद रह जाएगी.
4: Follow Juhi's inspiring journey of justice, courage and dreams in Juhi Mui every Monday to Friday 7:30 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Sunrise Radio par is ghante ka hamara hit of the hour. One of my karaoke favorites. Bandar Monkey in a Cage, Vishal Mishra, Shashwat Divedi. Kyun maza aa raha hai? On Sunrise. Happy Friday.

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।